0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: बस मचना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: रेडियो डीएस।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मचना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: हाँ माँ, बेटा पापा को हार्ट अटैक आया है।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
4: राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक ता

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस रांची है जाना।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंदना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों अभी हमने सुना भक्ति संगीत के दौरान अनेक भजन रचनाएं। और दोस्तों अब चलते हैं हम पुराने फिल्मी गीतों की ओर। दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आप।

0: बाद में।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: तो
4: नाम क्या है आपका?
3: मंजूर अली खान।
4: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: खुदा और मोहब्बत।
4: खुदा और मोहब्बत।
3: जी
4: सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कहाँ से बात? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: पलक।
0: पलक जी कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: शादी वाला जोड़ा।
0: शादी वाला जोड़ा,
1: हाँ।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।
2: तुम्हें जंग पे जाते तिलक मैंने तुम्हारी जीत के लिए लगाया था, न जानती थी कि इस तिलक को तुम किसी और का सिंदूर बना दोगे। गुनाह है इश्क का फैसला है सूरते पाजेब में, आह कैद भी रहे और आबाद भी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नमस्ते, मैं निशा शर्मा गंगापुर सिटी से।
1: नमस्ते, गाना कौन सा सुनना चाहोगे निशा जी?
0: बूंदे क्या कहती है।
1: उनके क्या कहती है?
0: हाँ
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: चिराग बंसल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: डीएस हॉस्टल
1: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो गर्म खून के बाढ़ लगते।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम रविंद्र मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: कोका कोला 2।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।
2: 12 का ही होगा ना?
3: दे दो। टोनी टोनी टोनी हर जगह टोनी टोनी, ये भी कोई गाना है? इससे बढ़िया तो मैं गा लूंगा। क्यों दादी?

0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सोहेल सैफी है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: जी मैं राजीव कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना सुनना चाहते हैं तिरछी टोपी वाले और बाबू भोले वाले।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: पुराना लगाना बड़े में गाना।
0: ओके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हिमांश राव।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पतली पतली कमर वो।
1: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैं।
1: हेलो सर जी। सर गाना कौन सा सुनना चाहोगी?
0: गाना सुनना है, पिक्चर का नाम है आई मिलन की रात, और गीत के बोल है काला सा काला मेरा यार दिलदार काला।
1: ओके सर, तुम्हारे आपकी फरमाइश।

0: नाम क्या है सर आपका?
1: तालिम खान, गंगापुर सिटी, साकिर चूड़े वाले के पास है, लोगो कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: देख लिया सारा जहां सजना।
0: सुना रहे हैं
1: अब्बा।

0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
1: हेलो,
0: हाजी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं गुलशन की?
1: जंगलापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते
1: हो? कुर्ती सेक्सी लगती है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।
2: थैंक यू राह।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अमित गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नसिया से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: भर के नाम चाली मौत का सामान।
2: चाली भर के नाम।

0: हेलो
1: नमस्कार जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हाँ सर, रतन लाल बोल रहा हूँ मऊ कला से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: तो वो सुना दो मैडम, मैंने कल बताया तो मैंने कल सुना नहीं है, है ना, उपकार फिल्म का, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले।
0: ओके सर, तुम्हारे यहाँ की फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:55 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश, आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आरबीसी से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है जी लिखो।
0: हाँ जी बताइए।
1: प्यार में दिल से मार दे गोली।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: क्या बोलते हैं ये स्वतन फिल्म का
0: गाने की बोल सर।
1: शायद मेरी माँ ने मुझे चाय को बुलाया, शायद मेरी शादी,
0: शायद मेरी शादी का
1: शादी का ख्याल मेरे। हाँ यही वाला
0: सुना रहे हैं। आपकी सरप्राइज पर ही गाना रेडियो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम प्रियांशु।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: कहीं आप सीखें
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जरा फिर से खेला।
1: क्या?
0: जरा फिर से खेला।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: हाँ जी नाम क्या है सर आपका?
1: मेरा नाम सोनू गुर्जर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सवाई माधोपुर बीमापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अब कौन से चांद पर जावे तू करे भूल भी यार।
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149।
5: हेलो
6: जी सर, नमस्ते।
5: नमस्कार दीदी, आज तो बड़ी लेट कॉल उठाया है आपने।
6: नहीं सर, फोन तो आएगा सही तो टांग, कॉलिंग आ रही है, उठाते जा रहे हैं सर।
5: नहीं, मैंने 10 बजे से पहले लगाया था तो मैंने कहा चलिए। तो आज गीत सुनवा दीजिए, अमर प्रेम का, रहना बीती जाए श्याम ना।
6: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू दीदी,
6: वेलकम सर।

0: हेलो
1: मैडम नमस्ते, मैं पूछती थी ब्रज मोहन महावर।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: ब्रज मोहन महावर।
0: कौन से बात कर रही?
1: सुनना पूछती थी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
1: मैडम आप सुना दो। अच्छा ये साफी फिल्म का गाना है, देखो ऐसा भी बस जीवन में आता है। अच्छा खासा दोस्त।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा,
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: जी मेरा नाम है प्रियांश मीना।
1: जी कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैं बात कर रहा हूँ मलाना डूंगर मानौली से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैं सुनना चाहता हूँ तू है कहाँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करोगे।

0: नाम क्या है आपका?
1: और सोनू।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पॉपुलर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगा प्रसिद्धि।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: रुकिया रानी।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: धीर भाई ठाकुर।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: अपने मऊकला गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कब आएगा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा।
1: फरमाइश पर ये गाना
0: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आपके सीने लाल या मैंने
1: ओके नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कशिश।
0: कहाँ से बात करूँ?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: रुपट्टे को संभाल सोनी है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करिए।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: नाम क्या है सर आपका?
3: तालिम खान, गंगापुर सिटी शाकिर चूड़े वाले के पास से।
4: हेलो हेलो,
2: हाँ जी, कहाँ, नाम क्या है आपका?
4: रोहित।
2: कहाँ से बात कर रहे?
4: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: झूठी थी तू और तेरा प्यार।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना

0: पॉकेट जेब कतरी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में।

0: साथ है।
1: हेलो,
2: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
2: रईस खान।
1: रईस खान जी, कहाँ से बात कर रहे?
2: लोकी कॉलोनी से।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप प्रेसर टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नहीं पराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: पापा के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवां।
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावा थी।

0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

तो वक्त हो चुका है 1:26 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नई तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों नई तरानों के बीचों में बातें करते हैं कि महिलाओं की

गर्मियों के मौसम में महिलाओं को अपनी सेहत, त्वचा और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एफएम रेडियो पर बोलने के लिए आप ये आसान और उपयोगी बातें बता सकते हैं। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और फल का सेवन शरीर को ठंडक देता है। दो, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, तेल मसाले वाली चीजें कम खाएं। हरी सब्जियां, दही, खीरा, तरबूज, खरबूजा जैसे मौसमी फल शरीर को ऊर्जा देते हैं। थ्री, धूप से बचाव करें, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तेज धूप में कम निकलें। बाहर जाते समय छाता, टोपी, सनग्लास और सूती कपड़ों का उपयोग करें। सौ, सूती और आरामदायक कपड़े पहने, गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना बेहतर रहता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है और पसीना कम परेशान करता है। 5, त्वचा का ध्यान रखें, दिन में 2-3 बार चेहरा साफ पानी से धोएं। एलोवेरा, गुलाब जल और घरेलू फेस पैक त्वचा को ताजगी देते हैं। 6, पर्याप्त नींद लें, गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। आराम करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। बच्चों और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, घर की महिलाएं परिवार की देखभाल करती हैं, इसलिए उन्हें बच्चों और बुजुर्गों को भी गर्मी से बचाने के उपाय अपनाने चाहिए। 8, साफ सफाई रखें, गर्मी में संक्रमण जल्दी फैलता है, साफ पानी पिएं, ताजा भोजन करें और घर के आसपास सफाई रखें। अंत में आप ये लाइन बोल सकते हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गर्मियों में अपने साथ साथ पूरे परिवार का भी ध्यान रखें।

0: शेयर नेक्सस।
1: हाँ जी, किवें लग्या मेरा गाना? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी3 दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।

0: का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: तो वक्त हो चुका है 3 बज चुके इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस।

प्यार तभी कर सकते हैं जब जब हम अपने हाथ से करना छोड़ दें। जिंदगी एक कारोबार नहीं है यार, जिसमें सिर्फ लेन देन ही चलता रहे।

तब मुझे पता चला कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आई। तुमने मुझे बहुत संभाला है बाबा, बहुत कुछ दिया। मैंने तो तुम्हें वो चीज दी है जो तुम्हें देना आसान था मेरे लिए, और तुमने मेरी मुश्किलें झेली, मेरी बेवफाई, मेरा बटा हुआ प्यार, और मैं तुम्हें तुम्हारी जगह भी नहीं दे पाया।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

0: साथ है।
1: गुड इवनिंग दोस्तों।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 4:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, अब आप सुनोगे थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:20 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। 89.6 रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी 90% से अधिक 110 विद्यार्थी 85% से अधिक 251 विद्यार्थी 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा यशांसी सिंगल अदिति मीना अश्विनी दोई सोनम मीना शुभम मीना खुशी गर्ग आकाश कुमार मीना प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9 10th 11th 12th विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।
4: तो वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो
0: जी मैम।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून मैम, नाम क्या है आपका?
1: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रही हूँ मैम।
0: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जा तुझको दिल से आजाद कर दिया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: थैंक यू, वेलकम।
2: अबे जब तुम्हें पता है कि इस जनरेटर की समस्या का है तो इसे ठीक का ही नहीं कर देते बे?
3: अरे पांडे जी, अगर ठीक कर देंगे तो यहाँ आने का बहाना भी तो खत्म हो जाएगा।
2: कैसा बहाना बे? बढ़िया।

0: हेलो
1: हेलो भाई, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम पूछ रहा हूँ, मीना ग्राम बिल्लू खड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: खुशी की वो रात आई।
0: कौन सा सर?
1: खुशी की वो रात आई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मथुरा उत्तर प्रदेश से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: फिल्म आशिकी।
1: गाने के बोल।
0: दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही प्यारा
1: सा। ओके सर,
0: थैंक यू सो मच।
1: यू वेलकम।
0: टेक केयर। बाय।

0: Sasuke.
1: You well.
0: Take care. Bye. See you.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन.
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हो?
1: कौन सा नाम सुनना चाहोगी?
2: मैंने कहा मुझसे दोस्ती करोगी.
1: ओके मैम, सुना गया.

0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी ने तो नाम आरू जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मन कहे न झूम।
1: कौन सा सर?
0: मन कहे न झूम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: करते हैं आपकी फरमाइश पर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निशा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरे नाम।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: नाम क्या है आपका?
1: सोहेल सैफी।
0: ये कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम आज जो गाना सुना था उसकी मूवी का नाम है विश्व महात्मा, तो गाने का बोले गजब ने किया है इशारा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: ओके नाउ
1: ठीक है सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन गिरामा,
1: ओके सर,
0: शरारत करने को ललचाए
1: रे। सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना। हेलो

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते, मैं निशा शर्मा।
0: नमस्ते जी, कहाँ से बात कर रहे हैं निशा जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: मैं तेरे इश्क में।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: सौरभ।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
4: काली गली वाजी के बिलपुड़ी।
3: कौन सा सर?
4: काका का।
3: काका, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर।

0: टेक जाई नाले सारे देख जाई मत्था टेक जाई नाले सारे।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: सौरभ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: लबों को।
1: कौन सा सर?

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: गंगापुर सिटी की धरती
1: तेरे वास्ते, तेरे वास्ते गाना सुना आपने वरुण जैन, शादाब अल्तमाश की आवाज में, सचिन जिगर की आवाज में, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया। और सर्दियों वाली मॉर्निंग यानी विंटर मॉर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना कि विंटर मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा फॉगी रहता है, जिससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनना। और कई बार जब हम ऐसे मुंह खोल के बाहर सांस छोड़ दे तो हमें फॉग नजर आता है। आपको नहीं पता था ना, झूठ मत बोला, आपको नहीं पता था। ऐसे ही और बचकाने फैक्ट के साथ, इम्पोर्टेंट विंटर फैक्ट के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन बैक टू बैक पहले तीन गाने आपके लिए।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: स्थिति के घर पर
1: देखो, अगर आपके गले में खराश है तो मेरे साथ रिपीट करो। चलो 1 2 3। नहीं नहीं, ये पार्ट आपको नहीं करना है। अर्जुन वेली गाना सुना आपने, फ्रॉम द फिल्म एनिमल, संग बाय बब्बल। बब्बल बब्बल जी ने बहुत ही प्यारा गाना गाया, भूपेंद्र बब्बल जी ने। लेकिन उससे भी प्यारा मैं एक स्पॉइलर तो है ही नहीं भैया। गंगापुर सिटी में अगर किसी ने, एक बंदे ने भी फिल्म देख ली, मतलब पूरे शहर ने भैया फिल्म देख लिया। और फिल्म एनिमल भैया 1,000 करोड़ के इतने करीब। बस मुझे यही फैक्ट बताना था, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, फिलहाल आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अमेजिंग गाने बजा रहा हूं मैं आपके लिए, 4 गाने बैक टू बैक।

0: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियस।
1: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
0: गंगापुर सिटी की धरतर। Radio DS.

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नए दिन में आपका स्वागत है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है जो आपको किसी शॉप पे नहीं मिल सकती, जैसे कि एक्सरसाइज करना, सुबह शाम घूमना, व्रत रखना, सबके साथ हंसी मजाक करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, पूरी नींद लेना, खुश रहना और कुछ मामलों में चुप रहना, लोगों की हेल्प करना, एक अच्छे दोस्त का साथ होना और आखिर में हम 89.6 डीएसएफएम भी आपके लिए दवाई है। मैं तनिषा आपके साथ 89.6 डीएसएफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से एक है पत्थर चट्टा की जादुई पत्तियां, जो आपको यूरिन इन्फेक्शन में राहत देगी, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखेगी, हड्डियां मजबूत बनाने में मदद करेगी। इसका पौधा आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। यहीं पे और हेल्थ टिप के साथ मैं मिलूंगी आपसे 89.6 डीएसएफएम पे। मैं तनीषा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
1: हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: राणा जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

हेलो दोस्तों, आपने 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।